दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना। गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे पिता समान ने, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू साडे पुरखियां दा खजाना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई गुरुदास जी कोलों गुरमुखी अखरां विच लिखा के साडे ते परोपकार कीता। ते साडे गुरु साहिबाना ने गुरमुखी दा एक एक अखर सवार के शिंगार के साडी झोली विच पाया। बहुत सारे शहीदां ने खून डोलिया इस बोली नू होंद विच रखण वास्ते, पर अज असी गुरमुखी पंजाबी मां बोली तो दूर हुंदे जा रहे हां। साध संगत जी, असी तां पंजाबी दे प्यारियां दा सुनेहा आप जी पास पहुंचा रहे हां। बेनती करदे हां, जे आप जी घर परिवार विच बच्चियां नाल पंजाबी विच गल बात करदे हो तां आप तंता दे जोग हो। जे कुछ कमी है तां अज ही इस पासे ध्यान दिओ। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही होता है। अजकल दे स्कूलां दोस्तां मित्रां विच उन्हां नूं इह समा नहीं मिलदा। जरा सोचिए, जे बच्चे पंजाबी मां बोली नूं नहीं समझणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना एक पासे रहा, वह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त करनगे? गुरु नानक साहिब ते गुरु गोविंद सिंह जी नाल किवें संबंध जोड़नगे?

जी वध तो वध जिन्निया भी जवाना बच्चियां नू पढ़ाओ अच्छा है, पर साध संगत जी पंजाबी मां बोली सिखी दा मुढ़ है, सिखी दा तुरा है, मां नू ना भुलिए। कहंदे ने ना जिस कौम नू कमजोर करना होवे उस कोलों उस दी मां बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैर ते आप ही खुआड़ा मार रहे हैं। जदों गुरु नानक साहिब जी ने अवतार तारिया मुगल राज दा समा सी, हिंदुस्तान दी जनता कमजोर ते नडाल हो चुकी सी। इस घातक वातावरण नू देखदियां बाबा नानक जी ने बचन उचारिया सी, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ये हिंदुस्तान दी जनता नू हलूना सी कि क्यों घर घर विच मियां बने बैठे हो, क्यों अपनी बोली त्याग दिती है। महापुरश बाबा नंद सिंह जी दे बचन पढ़ी देने, कोई मेरियां अखां नाल तके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक अखर गुरु नानक है। जे गुरमुखी आउंदी नहीं, जे पंजाबी आंदी नहीं, ते किवें गुरु नानक दे दीदार होणगे। साडा सभ्याचारक मां बोली तो बगैर अधूरा है। साडे ब्याह शादियां खाना पीना बैठना उठना जे मां बोली नहीं ते सब कुछ अधूरा है। साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी जो 35 अखरी गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडी चोली विच पाई, अज साडा हाल देख के सानू ताना मार रही है। मुठ्ठां मीट के नुकरे रहां बैठी, टुट्टी होई रवाब रवाबियां दी, पुछी सार ना जिन्हां ने सरफ मेरी, बे मैं बोली आ उन्हां पंजाबियां दी। जिवें रवाब टुट जावे ते रवाबी उसनू एक नुकरे खलार दिंदे ने, मैं इन्हां दी मां बोली हाँ, इन्हां दा सवाद देख के थक टुट गई हाँ, इन्हां ने मैनू नुकरे खलार दिता है, ये मेरी सार नहीं लेंदे। मैं इन्हां दे गुरुआं पीरां दी सत्कारी होई हाँ, पर अज पछमी सभ्यता देख के मेरी गोद विचों उठदे जा रहे ने। भाई गुरदास जी कहंदे ने ना, मां दे नां प्यार तुल, चाचियां ताइयां किन्ना भी प्यार देन, मां दी गोद दा निग कोई होर नहीं दे सकदा। असी किसे भी बोली नू माड़ा नहीं कहंदे। अंग्रेजां नू अंग्रेजी मुबारक है, ये उन्हां दी मातृ भाषा मां बोली है। जिस दी भी कोई मां बोली है उनू ओदी ओ बोली मुबारक है, पर असी इस ते माण करिए, साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी है। गुरु प्यारियो अपना फर्ज पछाणो, सजणा मित्रां नू ये सुनेहा जरूर सुना दिओ। पंजाबी बोलो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी सुनो। अगे गुरु नानक साहब का अपना काम है, वो आपे ही सहाई होंगे।

सेवहि जो सेवहि तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै है हर त्यावै तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का भाओ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

अखल पवन के सृजनहारे, दास जान मोहि लेहु उबारे। कभ्यो बाच बेंती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पछानै कट कट के पट पट की जानै जब करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब करख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलमा

ताको कृपाहने अनुमानत महामूढ़ कछु भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद है देती वर्णत भिन्न भिन्न तो ही तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं फूपा। अंडर जेर से तजगिनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवे बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं पव। आव रक्षा मेरी तुम करो सिख्यो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तु जितव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट रिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनिक मैं हरि हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा हा।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुव्रता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुनै गुंग जो याही सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन।

तीर्थ कोट किए स्नान, दिए बहुदान महाम्रत तारे, देश विरयो कर पेश तपो तन,

दीन दयाल अकाल पजे बिना। अंत को अंत के ताम सिधारे, सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हांद साहो। जिस पा

काम क्रोध न गर्भा भरिया मिल साधु खंड लखंडा है। पोर विलखत लिखे गुर पाया मन हार ले व मंडल मंडा है। कर साधु अंजरे पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाव। सागत हार अस साधना जानिया तिन अंत न हो मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चलै च वैदक पाव है जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम सुमाणे दुख जन्म मरण पाखंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर भव शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा है। जन नानक नाम दार टेक है हर नाम।

अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख सफारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी, हर प्रभ जी शीनत शास्त्र दीन बहु साज, सुदम अपते राखिया गनका पड़तक पड़त

की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहिभंग गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सूचना हो।

सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता परम परम परमेश्वर कोच पालन सदा।

0: कब कबरित जग मानी पुरतीन
1: लोक चौदह के विके जग जाप ही जे जाप
0: नाथ मृदा कस बेजे ताप
1: परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुर कपार
0: सर्व सचो शिवम गण मनहार
1: काल हीन कलाश जुग

0: श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कृपया पाँच पैंती चौपाई हमरी करो।
1: पूरन होई जित की इच्छा।
2: अच्छा मन मन रहे हमारा अपना जान करो पतवारा।
1: हरे दुसवेद मंगाबू आप हाथे मोई बुझाबू।
2: सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा।
1: अच्छा नमस्कार दे करिए सब विरिंग को आसन करिए।
2: पूरन होए हमारी आशा को जन की रहे प्यासा।
1: मैं शाल को अपना दिया जो वो चो सो तुम ते पाओ।
2: सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्रा हमारे मारिया।
1: आप हाथे मुझे बढ़िए मृंग काल का त्रास सुन लिए।
2: जो सदा हमारे पक्षा श्री।

0: नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे।
1: साचा नाम मेरा आधारो,
0: साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइयां।
1: कर सान सुख मन आय वस्या जिन इच्छा सब पुजाइयां।
0: सदा कुर्बान कीता गुर विठो जिस दियां ए वडियाइयां।
1: कहे नानक सुनो संतो सबद तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो।
0: वाजे पंच शब्द तित कर सबागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया।
1: पंच तुत तुत वास कीते काल कंटक मारिया।
0: कर्म पाया तु जिन को से नाम हर के लागे।
1: कहे नानक ते सुख होवा तित कर अनहद वाजे।
0: साची लिवे बिन देन माणी देन माणी लिवे बाजो क्या करे विचारिया।
1: तुत बार समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया।
0: एस नु होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया।
1: कहे नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया।
0: आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया।
1: जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया।
0: कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया।
1: अंदरो जिनका मोह टूटा तिनका सबद सचे सवारिया।
0: कहे नानक ए आनंद है आनंद गुरु ते जानिया।
1: बाबा जिसु दे सोई जन पावे।
0: पावे ते सो जन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया।
1: एक परम पुले फिरे दैदिस एक नाम लाग सवारिया।
0: गुरु प्रसादी मन पिया गुर प्रसादी मन पिया निर्मल जिन्ना पाना पावे।
1: कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे।
0: आवो संत प्यारियो अकत की करे कहानी।
1: करे कहानी अकत केरी कित द्वारे पाये।
0: तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मनिए पाया।
1: हुक्म मनियो गुरु केरा कावो सच्ची बाणी।
0: कहे नानक सुनो संतो कथियो कत कहानी।
1: ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया।
0: चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया।
1: ए माया मोनी जिन एक परम पुलाया।
0: माया ता मोनी तिन्ने कीती जिन ठगोली पाया।
1: कुर्बान कीता तिसे विठो जिन मोह मिठा लाया।
0: कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न

0: असुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया
1: अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया
0: जी जन सब तू दो पाए एक एक वेग पर

0: सहसे जीव मलिन है कित संजम तोता जाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ऐसे सा इव जाए
1: बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमेले तिनी जन्म जुए हारे
0: ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण।

हम अंधले अंध बिखर बिखराते क्यों चल गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे अपन पाली गुर सिख मीत चल हो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो हर हर कथा निराली।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरणां विच विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु साहब जी की अपार कृपा बख्शिश मेहरामत हुई है। पातशाह जी ने अपने पावन पवित्र अस्थाना दियाँ अमृत वेले दियाँ हाजरियाँ बख्शिश कीतियाँ हन। सतगुरु साहब इसी तरह नेम अते प्रेम सानू सारिआं नूं आप बख्शिश करदे रहन। सतगुरु साहब जी दे पावन पवित्र स्थानां ते जो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पहले प्रकाश के संबंध दे विच सतगुरु साहब जी दे स्थानां ते अज 10 बजे दे करीब श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे। आप समूह संगतां ने हाजरियां भरन की कृपालता करनी जी। सतगुरु साहब महाराज श्री गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने जो 1601 विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना आरंभ करके 1604 विच संपूर्णता की सी उस संबंध में सतगुरु जी दे स्थानां ते परसों शनिवार वाले दिन गुरमत समागम होणगे। आप समूह संगतां ने हाजरियां भरन की कृपालता करनी जी। आओ हुण भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी दे जथे पासों पातशाह जी दे वार दे कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ख्वार हुए सब मिलेंगे, बोले सौ निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनया मन उपजिया चाया राम मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनया

परमात्मा मेरा प्यार तेरे नाल होंदा नहीं, हे मेरे सच्चे गुरु मेरा प्यार होंदा नहीं। बचपन तो तेरे नाल

प्यार दे नाल भरी हुई है। इत्थों पता चलता है कि सतगुरु जी किन्ने वैरागी और कितने परमात्मा नूं प्यार करने वाले